नमस्कार, FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन शनिवार है, शक संवत 1948 दे ज्येष्ठ महीने दी 30 तारीख है। तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे जून महीने दी 20 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे ने। साढ़े अज की सभा के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से सवेर की शुरुआत परमात्मा दे नाम सुमिरन दे नाल प्रोग्राम सरवन करोगे वंदना। छे बजके 5 मिनट के वंदना प्रोग्राम सरवन करने तो बाद 7 बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज हेडलाइंस। सात बजके 2 मिनट से जानकारी के नाल भरपूर प्रोग्राम होएगा गुड मॉर्निंग जलंधर। 8:30 साढ़े प्रादेशिक चैनल तो तुसी सुनोगे पंजाबी दे विच खबरां।

के 40 मिनट में बैक टू बैक पंजाबी गीत संगीत का प्रोग्राम होएगा। प्रोग्राम होएगा अड्डी टप्पा। नौ बजे तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिस दे विच व्हाट्सएप दे जरिए तुसी अपने ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकोगे। दस बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और 10:02 ते हिंदी गीत संगीत का सिलसिला होएगा। प्रोग्राम होएगा गीत बहार। ग्यारह बजे तुसी सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और 11:02 ते थोड़ियां फरमाइशां नूं तड़का लगांदा होया प्रोग्राम होएगा पंजाबी तड़का। 11:03 का प्रसारण सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो और सुनोगे प्रोग्राम स्टम्प्ड। 12:00 तुसी सुनोगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस और 12:02 प्रोग्राम होएगा होम स्वीट होम। 1:00 थोड़े मूड नू मेलोडियस करते हुए पल होन के प्रोग्राम होएगा मिड डे मेलोडीज और 1:40 ते सारे प्रादेशिक चैनल तो पंजाबी दे विच खबरां सुनोगे और 1:50 ते प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज इसे तरह जारी रहेगा। 2:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है। 3:00 का प्रसारण होएगा दिल्ली केंद्र तो जिथे तुसी सुनोगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर और 3:55 ते तुसी सुनोगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वालों किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करन दा सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र तो।

5 बजे युवा वर्ग अपना प्रोग्राम लेके हाजिर होगा युव वाणी। छह बजे प्रसारण सुनोगे FM बैंड 102.7 MHz से प्रोग्राम होगा लव यू जिंदगी और 6:20 पे प्रादेशिक खबर सुनोगे साढ़े प्रादेशिक चैनल तो और 8:03 प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरह जारी रहेगा। सात बजे जैसे सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और फिल्मी दुनिया की सैर कराएगा प्रोग्राम होगा फिल्मी दुनिया 7:02 पे। 8 बजे तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 8:02 पे प्रोग्राम होगा नेट वाणी। 9 बजे तुम सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस और 9:02 पे प्रोग्राम होगा दिल चाहता है। दस बजे तुम सुनोगे शामी गजल और 10:03 पे प्रोग्राम होगा एक प्यार करने का माह है। 8:30 से प्रसारित होने वाले प्रोग्राम तीन प्रसारण समा।

जिथे सारे हीले खत्म हो जान, उथे बस एक चीज काम आती है, वो है उस मालक दे गे कीती हुई अरदास अरदास अरदास।

से सफर होगा 102.7 मेगाहर्ट्ज से 103.6 मेगाहर्ट्ज जेडी सारे दोस्त आकाशवाणी अमृतसर तो जुड़े हुए ने और नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप के उत्ते भी जुड़े इस वेले बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए ने इन्होंने सारे का स्वागत करने हुए चलानी आई खूबसूरत गीत दिल से दिल तक।

वाव जी वाव, खुशी तो हर दिल दे विच बैठी है, हर एहसास दे विच बैठती है। वैसे अजकल ना खुशी के मापदंड की गल करिए ना तो बड़े अजीब जे हो गए ने। बच्चों को खुशी पता कदों होती है? जो स्कूल तो छुट्टी हो जाए, ओ छुट्टी। जो मापियां नूं उदों होंदी है जो बच्चे ना समय से सो जाण या स्कूल चले जाण, तो इदा दी चीज़ों के ना पेरेंट्स नूं खुशी होंदी है। अरे कुछ लोगों को ना सिर्फ यह सुन के खुशी हो जाती है कि तुहाडा पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है। पर सच दसा खुशी कोई महंगी चीज़ नहीं है, ये तो वो एहसास है जो कह सकते हैं चाह तो जो पहला घुट होंदा ना, तो दोस्तों उदो अचानक फोन आ जाए या महीने के आखिर विच पर्स विच मिले 100 रुपए के नोट नाल भी आ जाता है। हाँ चाह का पहला घुट पीने तेरे मतलब कि जे जबान के उत्ते या चेहरे के उत्ते मुस्कुराहट आनी हो तो तुम कह देंगे ना वाह चाह तो अज ना सच्ची बड़ी स्वाद बनी है। वो अचानक बटुए दे विच्चों 100 रुपया लभ जाए, ओ वाह जी वाह, खुशी कितनी होती है, ओ हो 100 रुपया लभा। चलो एक बार ना एक दादा जी ना हर सवेरे ना पार्क विच बेंच ते बैठ के ना मुस्कुराते रहते सीगे। एक नौजवान आया उन्होंने कोल और उन्हें पूछा, दादा जी मैं हमेशा तुहानू इस बेंच ते बैठे वेखदा, तुसी मुस्कुराते हुए मिलते हो, थोड़ी इस खुशी का राज की है? ओ दादा जी ने ना हंस के कहा, ओ पुत्रा मैं रोज ना दो चौणा करदा वा, जा ता छोटिया छोटिया गल्लां ते गुस्सा कर लवा या फिर उन्हां दे उत्ते हंस लवा। मैं हंसना चुन लैना हाँ, क्योंकि गुस्से नाल तां ना मेरा ना ब्लड प्रेशर वध जांदा है। इसलिए दोस्तों जदों भी कोई पल मिले, जदों भी कोई घड़ी मिले ना, खुशी अपने चेहरे के उत्ते ले आओ। कोशिश करो कि दूसरों के चेहरे के उत्ते भी लेके आ सको। दोस्तों खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये तो हर दिन के छोटे छोटे पलों के लुकी हुई होती है। तो अज अपने आप को एक सवाल पूछियो कि आखिरी बार तुसी बिना किसी कारण दे कदों हसे सी, दिल खोल के कदों हसे सी, ये सवाल ना तुसी अपने आप को पूछना है, तो सानू भी दस्सो तुहाडे लई खुशी की है, वो कड़ी छोटी जी गल है जो तुहाडे चेहरे के उत्ते तुरंत इंस्टेंट जी है ना मुस्कुराहट लेके आ जाती है, स्माइल लेके आ जाती है। तो मैं भी दस दियो जी 9855101027 नंबर बिल्कुल ऑन है और थोड़े मैसेजेस का करेंगे इंतजार कि केड़ा वो पल है जो थानू तुरंत क्विकली खुशी मिल जाती है। सो हर वो पल होना चाहिए जिस दिन तुम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, तो अगला गीत भी कुछ इसे तरह का है।

0: कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 12 के तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते हैं।
1: FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से वेला हो रहा प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा। ते आओ प्रोग्राम दे इस सफर की शुरुआत करते हैं इस सुने जे गीत दे नाल।

क्या बात है, क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत डॉली गुलेरिया दी आवाज, और नाल दे नाल सुरेंद्र कौर दी आवाज, बहुत ही खूबसूरत की जड़ा होने तुसी सुनिया काला डोरिया कुंडे नाल लड़े आई है, छोटा देवरा भाभी नाल लड़े आई है। वैसे यहो जे गीत जिहड़े ने ना, चाहे हिंदी होण चाहे पुरानी पंजाबी होण ना, पुराने गीत ना दिल नूं छू के चले जांदे ने, और दिल नूं छू के जांदे ने ये सारियां चीज़ां, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां कि असीं तुसीं सारे जने मिल के करने आ। बिल्कुल जी, दिल अपना पंजाबी का सिलसिला शुरू हो चुका है, दोस्तों के मैसेज गाने भी शुरू हो चुके हैं। लो जी, पहला मैसेज जिहड़ा आ पढ़ लैंदे आ। ये साडे कोल आया है जी बिंदु बस्ती शेख जलंधर तो। प्यार बांटने से बढ़ता है और सम्मान देने से रिश्ते खिल उठते हैं। जीवन में हमेशा प्रेम, विनम्रता और आदर बनाए रखिए, यही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वाले पूंजी ही संभाल के रखांगे, ता ही असी अपनी जिंदगी नू खूबसूरत तरीके दे नाल अगे ले जा सकांगे। अगला मैसेज अमरजीत जसल प्रेम मार्केट बठिंडा तो सानू कर रहे ने। उन्हें क्या जी, जो चीज़ तुहाड़े मन की शांति खो लवे, जो चीज़ तुहाड़े मन की शांति खो लवे, उसनू छड़ देना ही समझदारी है, चाहे

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: साथ बम बम बम बम बम बम लहरी,
1: ये दुनिया बड़ी नागिन जहरी,
0: संग मारेगी
1: तो बच के रही
0: गंगर वर्गी सोहल कुड़ी, सुन बचन बिलासे
2: संता दे
0: टिलिया दे वासे,
2: संता दे
0: चारे पासे
2: संता दे
0: पर जावण कासे,
2: संता दे
0: कल्याण करांगे
2: लोकां दा
0: दुख दर्द हरांगे
2: लोकां दा,
0: तेनु देवा इक वार पहलो इक काम कर, हैनी कोल जे रुपया कढ तेली।

0: अंतरयामी ध्यान करो उपदीदा बेड़ा पार करो जे पुलचुक हो गई माफ करो इन सास करो
1: बम बम बम बम बम बम बम बम बम संता दे होंदया
2: बादा गम पापा जी की बीती
3: जा कमे
0: कोई बात बताओ
4: लड़की को
0: ओ गल समझाओ
4: लड़की को
0: कोई वक्त बताओ
4: लड़की को
1: बम बम बम बम बम बम बम बोले लुधियाने कंटा घर कोड़े दिन एतवार जग वजन चार कर हो के प्यार
0: कर के श्रृंगार
1: आई मुड़ जाई पर चली केरी आई
0: कोई चाहिदी नी नाल सहेली
4: दुनिया

असलियत में रहने से उतना ही कतराते हैं, जो हकीकत में कभी मिल नहीं पाते, ख्वाबों में उनसे भी गले मिल जाते हैं। वेल दोस्तों, ये गल तो है, बहुत सारी इस तो एक गल याद आ गई कि बहुत बार होंगे कि ना अनएक्सपैक्टिड सानू लोग मिलते हैं, जो कि सानू नहीं होंगे कि यार एकदम मिल गया बंद इंसान, ये तो बिल्कुल मेरे तो अलग है, वाइब कि मैच कर गई। पर फिर भी वो साढ़े लिए ना एक प्यारे इंसान बन जाते, साढ़े लाइफ पार्टनर भी बन जाते हैं, तो साढ़े हम सफर भी बन जाते हैं दोस्तों। वैल बहुत सोहना लिखा इन्होंने, उस तो बाद साढ़े अगले सुर उत्ते लिख रहे हैं कि तेन दिल का मसला दसिया, यह भी दसिया मसला तू है, तेनू दिल का मसला दसिया, यह भी दसिया मसला तू है, तेरे वलों तो तसली ना कोई हल, लोगों नाल तू खिड़ खिड़ हसे, खुशी मनावे रस्से वस्से साढ़े नाल अज ते कल, हाँ कोई गल है। वाह, दोपहर दी सत श्री अकाल रमनी सर पिंड कंदोला नेड़े आदमपुर, कुलविंदर टेलर जी ने अज लिख के भेजा, कमाल करती कुलविंदर जी। क्या बात है जी। उस तो बाद है साढ़े लोहा बाजार मलेरकोटला राकेश कुमार जी लिख रहे ने कि टुटिया होया विश्वास ते टुटिया होया बचपन जिंदगी च दोबारा नहीं मिलता, नफरत विच की रख्या है मोहब्बत दे नाल जीना सिख, क्योंकि यह दुनिया ना तो साडा घर है ते ना ही थोड़ा ठिकाणा, याद रखना यह मौका सिर्फ कहानियां विच ही मिलता है, जिंदगी दे विच नहीं मिलता। क्या बात है जी। देखो जरूरी नहीं दोस्तों कि सानू कोई इंसान बोल के समझावे, सानू लिख के भी इन्ना कुछ समझा सकता है हो, इस तो पता लगता है। क्या बात है जी, राकेश कुमार जी कमाल कमाल करती। अगली है गली अफीम वाली प्रेम मार्केट भटिंडा, अमरजीत जस्सल चूची ने भेजा है सानू कि कुछ गल्लां तो अनजान रहना ही चंगा हुंदा है, कि कुछ गल्लां तो अनजान रहना ही चंगा हुंदा है, जे सब कुछ पता लग जाए तो हासे गवाच जांदे ने। क्या बात है जी, ये तो गल है जी। असी दोस्तों हमेशा कहने यार काश सानूं ये चीज़ पहला पता लग जाती, वह जिहड़ी एक्साइटमेंट आ वह जिहड़ा ना भावें सानूं कोई भी सिचुएशन मिल जाए पर सानूं एक्साइटमेंट ही नहीं पता, साडी एक्साइटमेंट ही मर जूगी सानूं, असी पहले तैयार हो जाऊंगे उस सिचुएशन लई, सानूं पता ये चीज़ होनी आ। कहिंदे ना अनुमान लगाना भी केवल ना जिहड़ा चंगा हो मतलब हो जाता है, आपां सोचदे ना कि यार आई गैस कि हाँ ये चीज़ हो सकती है तो हो जाती। चलो उस तो बाद है सत श्री अकाल दिल शायर विच रमनीश जी बलविंदर सारा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे ने कि जब तुम रूठ जाते हो सब कुछ अधूरा सा लगता है, जब तुम रूठ जाते हो सब कुछ अधूरा सा लगता है, मत रूठा करो मेरी जान एक पल सदियां सा लगता है। ओ हो, क्या बात है जी, क्या बात है, सरोते कमाल कर रहे अज ना तीर छड रहे मेरे वालों कि हाँ तुसी पढ़ो देखियो की फील होंदा। बहुत सोहना जी, बहुत सोहना लिखिया अपना रख दिल शायर विच जिहड़े बलविंदर सरा जी, बहुत सोहना। उत्तवाद साडे सरोते किरण नरूला जी, FM दिला शायर है RJ रमनीश सर जी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून किरण नरूला मैम। कहंदे ने कि रह पाओगे भुला कर देख लो, है रह पाओगे भुला कर देख लो, यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। कहंदे ने रह पाओगे भुला कर देख लो, यकीन ना आए तो आजमा के देख लो, हर जगह महसूस होती मेरी कमी, अपनी महफिल को कितना भी सजा कर देख लो। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है किरण जी, कमाल करती, बहुत सोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। उत्तवाद है ओए दिल, अच्छा जी सीधे ओए तो शुरुआत की थी, मतलब मैनू नहीं उन्होंने अपनी पेशकारी तो

0: जाएगा मैम। थैंक यू।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो सुन रहे हो प्रोग्राम दिल आज शायर है, कंटिन्यू कर दे प्रोग्राम नो कहंदा पावे है। साडे सरोते ने लिखा है कि दिल चाहता है। अच्छा जी, दिल चाहता है थोड़ा ते साडा अज दिल आज शायर है। वेल, कोई गल नहीं, दिल आज शायर है प्रोग्राम पेश करने वाले आरजे रमनीश जी नू प्यार नाल पिजी गलवकड़ी महसूस करना। आए है क्या बात है, जरूर महसूस करांगे जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਖਾਕਸਾਰ ਉਦੇ ਚੰਦਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਝਮੇ ਢੂੰਡੋ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾਪਨ, ਮੁਝਮੇ ਢੂੰਡੋ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾਪਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰਾਇਆਪਨ, ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਹੈ ਔਛਾਪਨ, आओ कुछ देर मिलकर हम रो लें, आओ कुछ देर मिलकर हम रो लें, कुछ तो महसूस होगा हल्कापन। क्या बात है जी। क्या बात है जी, अपना खाकसार उदय चंद्र जी ने सानू भेजे सी, बहुत ही कमाल दी, कमाल मतलब। उस तो बाद साडे सरोते ने भेजे कि चांद की दोस्ती रात से सुबह तक, सूरज की दोस्ती सुबह से शाम तक, हमारी दोस्ती पहली मुलाकात से आखिरी सांस तक। मिर्जापुर कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान ने लिखी है। वाओ वाओ वाओ वाओ वाओ। गलबात सरोते हो थी, गलबात साडे सरोते जो कि हमेशा पहली हाजिरी लाते, अज थोड़ा रुक के आए, लगता काम चले गए। हो है राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चलिया सुल्तानपुर, लिख रहे ने कि चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि रस्ते में बिखर जाऊंगा। ओहो, चल रहे थे जो मेरे साथ, कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे रस्ते में बिखर जाऊंगे। मंजिले लाख कठिन आए, मंजिले लाख कठिन आए, गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। ओ क्या बात है जी। क्या बात है सरोते, क्या बात है, थोड़े लिए वैसे क्लैपिंग करना तो वैसे बंद ही है। वेल दोस्तों, तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिल आज शायर है, ते ना जिहड़ा मूड भी है ना दिल आज शायर ही होया पाया है। कहने मतलब ना, हुण असी किसी नूं जदों सुनदे हाँ या खुद का पढ़ते हैं, खुद का लिखते हैं, तो की हुंदा है ना, सानू अपनियां चीज़ां बहुत याद आ लग जांदियां। ओ यार हाँ, ये तो मेरे नाल कनैक्ट कर गई, लाइन तो यार कमाल ही करती यार, की करता यार, ये की लिखता। तो मतलब इदा हुंदा ही, हमेशा ही हुंदा वैसे तो, पर देखा जाए दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ 4 to 5 ਹੈਲੋ ਜਲੰਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 to 7 ਚੱਲੂਗਾ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਾਈਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਨਾ ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਦਤਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਛਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀਕਾਰੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ।

तेरी हर चाप से, यानी हवा के झोंके से कोई पत्ता हिला या पर्दा हिल गया है, आहट आहट को चाप कहते हैं, कि तेरी हर चाप से जलते हैं ख्यालों में चिराग, इन्हें खुशी कि शायद महबूब आ गया वो।

दोस्तों, तो इस सुन रहे हो प्रोग्राम दिल आज शायर है, तो मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश। वेल दोस्तों, जिवें कि प्रोग्राम चल रहा दिल आज शायर है, तो क्यों एक जब आप गज़ल पेशकारी करते हैं, शायरी बोलते हैं, लिखते हैं, तो उन्होंने इन्हें एक साडे जो भी कोई गज़ल की जरा ना आता है ना, एक आवाज़ कन्ना च गूंजती है हमेशा, जगजीत सिंह जी की ओ आवाज़। वैल दोस्तों, ओ आवाज़ जिहड़ी एक आवाज़ कन्ना च गूंजती है, तो वह आवाज़ जिहड़ी दर्द नूं सुर च परो दिंदी सी, वह आवाज़ जिहड़ी 8 फरवरी 1941 नूं राजस्थान दे श्री गंगानगर च जन्मे जगमोहन सिंह दी सी। बचपन तो सुरा दा सफर जगजीत दे जिहड़े पिता अमर सिंह तिमान सरकारी मुलाजम सी, पर घर च कीर्तन का माहौल सी। 6 साल की उम्र च पंडित छगन लाल शर्मा नूं शास्त्री संगीत सीखना शुरू किया। स्कूल च गूंगा शायर कह के मजाक उड़ता क्योंकि वह होली बोलता सी, पर उही गूंगा एक दिन दुनिया नूं अपनी आवाज़ से रुआउण वाला सी। एक किनू पता सी दोस्तों? हाँ जी, मुंबई संघर्ष की धरती है दोस्तों। 1965 च जेब च ना सिर्फ 8 रुपए लैके ना मुंबई आ गए सी। स्टेशन ते सौदा गुरुद्वारिया ते लंगर छकदे, जिंगल गाउंदे, कोरस च आवाज़ देंदे। 1967 च बंगाली कुड़ी चित्रा दत्ता नाल व्याह होया। दोवां दी जोड़ी ने गज़ल नूं बैठका चों कढ के आम लोकां दे ड्राइंग रूम तक पहुँचाया। जिहड़ा दर्द दा दूजा नाम है ना, 1990 च 20 साल के पुत विवेक की सड़क हादसे च मौत हो गई सी। जगजीत 1 साल लई खामोश हो गए, फिर जदों मुड़े तो उन्होंने आवाज़ च उही दर्द सी जिहड़ा सिर्फ बाप महसूस कर सकता। 2009 च पत्नी चित्रा ने भी गाउणा छड्ड दिता, ते 10 अक्टूबर 2011 नूं दिमाग की नाड़ी फटन नाल इह सुरां दा सफर रुक गया। विरासत विच दोस्तों, जगजीत सिंह जी ने 80 तो वध एल्बमां दित्तियां हैं सानू, जिहदे विचों दी अनफॉरगेटेबल्स, बियॉन्ड टाइम, मिर्सा गालिब सीरियल दा संगीत अमर हो गया। उन्हें गज़ल नूं उर्दू दे किले चों कढ के हिंदी पंजाबी करा दी जुबान बना दित्ती सी। जगजीत सिंह दी जिहड़ी 4 अमर पंजाबी गज़लां ते शेर सी ना, की कहिंदे ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन किथे परदेस, तेरे बिना जिंदगी ते कोई शिकवा ता नहीं, होठों छू लो तू गीत अमर हो जावे, अखो छू तो तुसी मीत अमर हो जावे, कागज़ की किश्ती बारिश का पानी, जांदी है किथे पुछो ता राणी, यह तो बस तुरदी है मौज दे सहारे, जिवें जिंदगी मेरी तेरे इंतजार च, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसका छुपा जिसको छुपा रहे हो, अखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। दोस्तों, जगजीत सिंह जी कहते थे कि मेरी आवाज़ उन्हना लोका लिए है जेड़े रात 2 बजे इकले जागते ने। अज भी जो रात डूंगी होंदी है ना किसी कमरे चो, उन्हना दी आवाज़ आती है तो लगता है दर्द नू भी सुकून मिल गया है। हूँ आप जगजीत सिंह जी की गल की, तो उन्होंने जी जी इन सारिया ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਤੁਮਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ।

0: वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की कला है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है, योग फॉर हेल्दी एजिंग यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। उम्र बढ़ना प्रकृति का नियम है।

0: लेकिन स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान बने रहना हमारे हाथ में है। योग न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं योगी गुलशन कुमार। आप एक योग आचार्य हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच।
0: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की, आपकी फिटनेस की, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर अपने एक विशेषज्ञ से। सबसे पहले, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, आप हमें ये बताइए, हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है?
1: वृद्धावस्था में स्वस्थ कैसे रहा जाए? और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हेल्दी एजिंग किसे कहा जाता है, तो उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक नियम है। बढ़ती उम्र एक खूबसूरत पड़ाव है, जिसे योग के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और योग का केवल मतलब ये नहीं होता कि शरीर को कठिन आसनों से मोड़ना, तोड़ना, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। योग का जहाँ तक अर्थ है, अपने शरीर के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, अपने शरीर के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सक्रिय करना। प्रायः देखा जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो शरीर में कुछ समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का, जिसे हम हेल्दी एजिंग की बात कह रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग को पाने के लिए योग एक माध्यम है। और इस माध्यम से हम एक हेल्दी एजिंग की लाइफ को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं।
0: तो योग, जैसे कि आपने कहा, हेल्दी एजिंग के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो ये हमारे शरीर को और मन को कैसे स्वस्थ रखेगा, कैसे रख सकते हैं हम इसके जरिए?
1: योग के माध्यम से शरीर और मन दोनों, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं, और योग दोनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। क्योंकि ये कहावत काफी समय से प्रचलित रही है कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यदि एक शरीर अगर हमारा रोगी होता है तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, और यदि मन रोगी होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के अलग अलग भागों पे पड़ता है। मन अगर रोगग्रस्त होता है, मन अगर विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता है, तो उसका हमारे शरीर के आंतरिक कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा दबाव पड़ता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शन धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को शक्ति विहीन महसूस करता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं तो योग करने से शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहने लगते हैं।
0: तो वृद्धावस्था की, जैसे कि हमारा आज का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, तो वृद्धावस्था में हम स्वस्थ रहें तो उसके लिए हमें कौन कौन से योग करने चाहिए?
1: वृद्धावस्था में व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए सबसे पहले है कि हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो सारे जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबल हों। हाथों में, उंगलियों में प्राय देखा गया है लोगों को रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है, घुटनों में अर्थराइटिस हो जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है, कंधों में फ्रोजन शोल्डर प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और इसके अलावा कमर में दर्द रहने लगता है, गर्दन में दर्द रहने लगता है। तो वृद्धावस्था में इन सब रोगों को दूर करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब हम योग की कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, कुछ योग की सूक्ष्म क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में जो एक बढ़ती उम्र के साथ चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज को बढ़ने से रोका जा सकता है, और शरीर को फिर पूर्व अवस्था में, एक जो किसी समय में, किसी उम्र में हमारी एक शरीर की एक स्वस्थ अवस्था बनी हुई रही थी, कभी वो स्वस्थ अवस्था फिर वापस लौटने लगती है।
0: वृद्धावस्था में स्वस्थ अवस्था रहे, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम

0: पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर हमने फिट रहने का, स्वस्थ रहने का लक्ष्य बना लिया तो हम उसे जरूर पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताइए कि वृद्धावस्था में, जैसे कि अगर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो इनके लिए क्या अलग अलग आसन है या कोई ऐसा आसन है जो दोनों कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं?
1: कुछ आसन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनमें से प्रमुख आसन हैं जैसे भुजंग आसन है, ये चाहे महिला है चाहे पुरुष है दोनों ही कर सकते हैं। भुजंग आसन की पद्धति इस प्रकार से है, बहुत आसान है करने का तरीका। इसमें पेट के बल लेट जाते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के नीचे रखते हुए सांस भरते भरते गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाते हुए कमर को मोड़ देने की स्थिति का नाम भुजंगासन है। ये महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे युवा हो, सभी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पादहस्त आसन है, ये खड़े होके आसन किए जाते हैं और दोनों पैर मिला के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे आगे झुकते हुए दोनों हाथों को बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ पैर के अंगूठे के साथ टच करेंगे और इसमें कुछ सेकंड रुकते हैं और कुछ सेकंड के बाद फिर दोनों हाथ ऊपर करते हुए वापस आ जाते हैं। ये बाधस्थ आसन है, इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक कटी चक्र आसन है, ये आसन भी पैरों में 2 फीट के लगभग अंतर रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ रखते हैं कंधे की सीध में और फिर दोनों हाथों को लेफ्ट साइड

0: कमर को ट्विस्ट करते हैं और कुछ सेकेंड ट्विस्ट करके रुकना होता है और फिर दोबारा सेंटर में वापस आ जाते हैं। ये दाएं और बाएं दोनों तरफ से यदि किया जाए तो ये आसन भी महिला और पुरुष दोनों एक साथ कर सकते हैं।
1: तो क्या यह आसन सुबह खाली पेट करना होता है या पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं?
0: खाली पेट ही आसन किए जाते हैं और सुबह अगर ये आसन खाली पेट किए जाएं तो अधिक लाभ मिल सकता है। और जिनके पास सुबह कोई ऑफिस वर्क है, कहीं पर उनको जल्दी जाना होता है, तो शाम के समय भी ये आसन किए जा सकते हैं। शर्त ये है कि दोपहर का खाना 4 घंटे पहले खाया हुआ हो।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते। ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटी का बताया है, मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योगा एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17।

0: साहब नमस्ते, ये लिखते हैं कि मैंने MRI करवाया था, मुझे साइटी का बताया है। मुझे हिप से काफ्स तक पेन होता है, मैं कौन सा योगा एक्सरसाइज करूं? सतीश कुमार, एज है 65 वर्ष और वजन है इनका 95 किलो, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
1: सतीश कुमार जी, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप साइटिका से पीड़ित हैं, और आसान तरीका है साइटिका पेन से मुक्त होने का, सबसे आसान तरीका योग ही है। इसमें विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन अनेक लोगों पे हमने प्रयोग किए हैं और उन लोगों ने साइटिका की पीड़ा से छुटकारा पाया है। इसमें एक ही टांग में रीढ़ की हड्डी से यह दर्द शुरू होता है कुल्ले तक, और कुल्ले से फिर थाइस में, और फिर काफ से पैर तक ये पेन की लहर जाती है। इसके लिए एक आसान आसन, जैसे मैंने बताया कि विपरीत हस्तपाद स्पर्श आसन कर सकती हैं। जमीन पर लेट जाएं और दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल फैला के रखें। फिर दाहिना पैर आप बाएं हाथ के साथ मिलाने की कोशिश करें। जब दाहिना पैर उठा करके बाईं तरफ लाएंगे तो घुटना सीधा रहना चाहिए, और यदि आपकी उसी टांग में दर्द है तो फिर ये शायद आप अपने आप ना कर पाए, तो इसके लिए फैमिली के किसी मेंबर्स की सपोर्ट लीजिए और वो आपके पैर को ऊपर उठाते हुए राइट वाले पैर को लेफ्ट फैले हुए हाथ के पास लगा के कुछ सेकंड रोकें, और कुछ सेकंड रोकने के बाद फिर पैर को वापस ले आना होता है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करते हैं। ये विधि अगर 3 से 5 5 बार सुबह शाम अगर की जाती है तो आप पाएंगे कि आपकी साइटिका पेन में काफी आपको 8 10 दिन के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास पैदा होता है। और फिर आप कुछ दिन अगर इसको कर लेते हैं, 15 दिन 20 दिन, तो 80 से 90% साइटिका पेन से छुटकारा मिल जाता है।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो नमस्कार जी,
1: हाँ
0: आपका
1: जी
0: नाम, आप कहाँ से
1: नमस्ते,
0: कॉल कर रहे हैं?
1: हिम्मत सिंह हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम। आपको भी नमस्ते और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
1: जी ईआरडी की प्रॉब्लम है जी, एसिडिटी ऊपर रिफ्लेक्स हो जाती है, उसके लिए कोई योगा जी?
0: एसिडिटी रिफ्लेक्स यदि आपको हो रही है तो जिन चीजों से एसिडिटी आपको खाने से बनती है, इस चीज का आपको पता चल गया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो सबसे पहले तो उनकी मात्रा को कम कीजिए। दूसरा, अपना आहार में बदलाव लाइए। दो प्रकार के आहार हम लेते हैं, एक होता है एसिडिक फूड और दूसरा होता है एल्कलाइन। तो 70% आप एल्कलाइन फूड लीजिए और 30% आप एसिडिक फूड लीजिएगा। एसिडिक फूड में आता है मैदे का बना हुआ सामान है, बेकरी है, बिस्किट्स है, और नमकीन है, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जितना भी क्षारीय आहार है उसमें गाजर है, खीरा है, टमाटर है, ये जितने भी रॉ वेजिटेबल्स हैं इनको आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको ये एसिडिटी की जो शिकायत है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। योग की जहाँ तक बात की जाए तो योग में आप कुंजल क्रिया कीजिए। सुबह खाली पेट 3 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और आगे झुकते हुए दो उंगलियां अपनी जीभ से थोड़ा सा टच करें, उससे पिया हुआ पानी सारा वोमिट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही पानी बाहर आएगा तो आपकी एसिडिटी भी उसमें घुलनशील होकर के बाहर निकल जाएगी। ऐसे प्रतिदिन कुछ दिन कर लीजिए तो डेफिनेटली आपको इससे काफी लाभ मिल जाएगा। एक और श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो नमस्ते
2: मैडम,
0: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: उत्तराखंड से रघुवीर जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: आज जैसे बताया कि योग से सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो मैडम मेरा ऐसा है ना, मेरा थोड़ा बीपी ज्यादा है, तो कोई अंग्रेजी दवाई है तो उससे मैं समझता हूँ कि साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, तो मुझे कौन सा योग करना पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि जो योग के साथ साथ दवाई भी खाना चाहिए, कैंसर की बीमारी दूर होती है, तो इस तरह से गलत धारणा भी लोगों के दिमाग में है, तो मुझे

0: यही बताना है कि आप मुझे कौन सा योग करना है, बीपी ज्यादा है।
1: देखिए, ब्लड प्रेशर हाई होना एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंतर्गत आता है। तो यदि आपका जीवन की पद्धति कुछ आपको लगता है कि अगर कुछ गलत चल रही है तो उसको थोड़ा सा बदलाव लाइएगा। और अगर आप अपने आहार में बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप तीखे मिर्च मसाले वाली वेजिटेबल्स लेते हैं या बाजार का कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीजें आप खाना पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा मिनिमाइज कीजिएगा। और जहां तक योग की बात आप कह रहे हैं कि इसमें देखा गया है कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको चंद्र भेदन प्राणायाम की मदद ले सकते हैं। इसमें राइट नोस्टिल बंद करते हुए लेफ्ट नोस्टिल से श्वास को भीतर लीजिए और राइट नोस्टिल से सांस को बाहर कर दीजिएगा। इसको थोड़ा सा संयम से कीजिए, जल्दी में और बहुत तेजी में आके मत करें। धीरे धीरे आप लेफ्ट नोस्टिल यानी चंद्र नाड़ी से सांस लीजिए और राइट नोस्टिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। ये कम से कम 5 मिनट तक आप कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त आप शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और आप अपने दोनों टीथ को आपस में मिलाइए और टीथ के माध्यम से वायु को मुख के द्वारा भीतर की ओर धीरे धीरे भरिए। पूरा भरने के बाद होठों को बंद कर लेते हैं, फिर दोनों नोस्टी से सांस को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरह से ये 2 प्राणायाम कीजिए, साथ में रिलैक्सेशन करिएगा। जब भी आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप थोड़ा रिलैक्सेशन करें, नीचे लेट जाएं या अपने बेड पे भी लेट सकते हैं। और बेड पे लेटते हुए शरीर को जितना रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को ढीला छोड़ते जाओ, ढीला छोड़ते जाओ। और ढीला छोड़ने का क्रम जो है 5 से 10 मिनट तक लगता है, एकदम शरीर ढीला नहीं हो जाता। जैसे जैसे बॉडी आपकी रिलैक्स होती चली जाएगी, आपका जो शूटअप हुआ ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और जब भी ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ हो तब आप राइट करवट लेके लेटे। राइट करवट लेके लेटने से आपकी चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास चलना शुरू हो जाती है। ऐसा करने से साइंटिफिकली क्या प्रभाव पड़ेगा कि चंद्र नाड़ी से सांस चलने से ब्लड प्रेशर कैसे कम हो सकता है? इसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारी पैरासंपैथेटिक नाड़ियों पे पड़ता है। जब पैरासंपैथेटिक नाड़ियां हमारी एक्टिव हो जाती हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, तनाव कम हो जाता है। और हम देखा है हमने कि 10 से 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो आप इनका प्रयोग करके देखिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि इनसे पहले भी एक श्रोता थे हमारे साथ लाइन पे, उन्होंने भी कहा था कि डाइजेशन का इश्यू है, तो वृद्धावस्था में अक्सर देखा जाता है कि कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। तो क्या कुछ ऐसे योग आसन है कि जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाए, जो हम डेली में कर ले, इजिली खा सके, इजिली डाइजेस्ट हो सके?
1: जो वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये देखा गया है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो चलना फिरना है वो काफ़ी कम हो जाता है। 60 ईयर्स की एज के बाद प्राय लोगों को देखा गया है, वो बैठे रहते हैं या वो अपने बेड पे लेटे रहते हैं, उन्हें आराम करना ज़्यादा आरामदायक और अच्छा लगने लगता है। बॉडी का डीएक्टिवेट होना ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हमारी पाचन क्रिया जो है मंद पड़ने शुरू हो जाती है। अगर आप थोड़ा बॉडी को वर्किंग में रखें, थोड़ा सा वॉक कीजिएगा और खाना जो है वो थोड़ा सा हल्का लीजिएगा, क्योंकि आप अब आपकी कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आप 10-15 साल पहले कर रहे थे, भोजन की क्वांटिटी यदि उतनी ही ले रहे हैं और वर्किंग में बॉडी है नहीं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है, और जिसके कारण आपको एक मंदाग्नि रोग के शिकार इस उम्र में लोग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है,

0: हमें केवल इतना ही करना है कि जठरा अग्नि को थोड़ा सा दीपन किया जाए। जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए योग में अग्नि सार क्रिया की बात बताई गई है। वज्रासन में इसमें बैठ जाते हैं, यानी दोनों घुटने मोड़ करके एड़ियां हिप्स के नीचे रख के वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखते हैं, सांस पूरा भरें और फिर सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर छोड़ के सांस को बाहर रोक देते हैं। तब पेट की धीरे धीरे पंपिंग करते हैं, पेट अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, अंदर खींचते हैं बाहर करते हैं, ऐसा सांस के बाहर रोके रहने तक 10-12 बार ही हो पाता है। फिर एक नई सांस ले ले, पेट को हिलाना बंद कर दे। इस तरह से इस पद्धति को 4-5 बार किया जाए तो आपकी पाचन क्रिया बेहतर हो जाएगी। और ये भी ध्यान रखना है, इस समस्या का जो संबंध है वो आपकी नींद से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी। तो रात की नींद गहरी होनी चाहिए, तब आपका पाचन क्रिया भी अच्छा होगा।
1: अक्सर हम सोचते हैं कि वृद्धावस्था में कि हमने अपनी उम्र में बहुत काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे, लेकिन काम से आराम करना है, शरीर को आराम नहीं देना।
0: जी जी
1: ये बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं योग फॉर हेल्दी एजिंग पर, यानी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग पर। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70 से 75-80 केजी के आसपास मेरा वजन है। ओ पॉजिटिव मेरा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप
1: जी।
2: पित्त मेरी प्रवृत्ति है। मेरे को क्या है कि कमर में और गर्दन में प्रॉब्लम है, हिप्स जॉइंट्स में और नेक में प्रॉब्लम है। अब मैं आगे की ओर बेंड होता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम बढ़ रही है, पीछे की ओर बेंड होता हूँ तो मुझे उसका रिलीफ मिलता है। हिप्स में ना क्या है, स्टिफनेस तो नहीं है, सॉरी स्वेलिंग नहीं है, स्टिफनेस और पेन होता है। सिर्फ धनुष होता है ना, धनुष मेरा बिना शरीर हो गया है। तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? और सर्दियों में बीमारी बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ा सा उतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बस सर्दी दोनों में बढ़ जाती है। क्या मैं विदाउट सपोर्ट बैठू या आगे की ओर बैंड हो, इंडियन टॉयलेट में ऐसे बैठता हूँ उस मुद्रा में बैठो, अवस्था में मुझे परेशानी हो रही है,
3: ठीक
2: है, मुझे क्या करना चाहिए?
3: आपने कमर और अपनी गर्दन में पीड़ा की बात कही है और आपने स्वयं ही बता दिया कि आगे झुकने से कमर में दर्द और गर्दन का दर्द बढ़ जाता है। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। जब तक आप थोड़ा योग करके स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको फ्रंट बेंडिंग अवॉइड करना चाहिए। और योग की जहाँ तक बात आती है कि अगर कमर में दर्द है तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। हमारी बैकबोन के अंदर एक डीजनरेटिव प्रोसेस होता है और दूसरा होता है कि हमारी जो कमर की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन आ जाती है तो भी हमारी कमर में दर्द होता है। यही स्थिति गर्दन के साथ होती है। जब भी हमारी रीढ़ की हड्डी में डीजनरेटिव प्रोसेस होगा तो हमारे वर्टिब्रेस के अंदर कुछ रिड्यूस हो जाती हैं जिसकी वजह से एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से टच करती है तो उसकी वजह से नाड़ियों में एक झुनझुनी एक दर्द की लहर पैदा होती है। तो आपको इसके लिए आसान सा दो आसन हम बता रहे हैं। एक आसन पहले भी मैं वर्णन कर चुका हूँ, भुजंग आसन करेंगे, पेट के बल लेटना है और पेट के बल लेट करके दोनों हाथ अपनी कंधों के नीचे रखते हुए हाथों के सपोर्ट से अपनी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएं और साथ साथ जितनी आसानी से कमर मुड़ जाए उतनी मोड़ें, क्योंकि ज्यादा मोड़ेंगे तो एकदम बहुत तेज दर्द कमर में आने की संभावना होती है। धीरे धीरे मोड़ें और फिर थोड़ा रुके 2-3 सेकंड, उसके बाद फिर माथे को नीचे ले आएंगे तो आपकी कमर में और गर्दन में उसी समय नीचे लाने पे तुरंत ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे करने से हमें आराम मिल रहा है। दूसरा हम कर सकते हैं मकर आसन। इसमें पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों घुटने मोड़ लेने चाहिए और दोनों हाथों को मकर आसन करने के लिए कंधों की सीध में फैला दिया जाता है और दोनों मुड़े हुए घुटनों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ें और अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ें। यहाँ पे 2 सेकंड

0: चार सेकंड जितना आप रुक सकती हैं आराम से रुकें, उसके बाद दो चार सेकंड बाद फिर दोनों घुटनों को और गर्दन को बीच में ले आए। इसी तरह से दोनों घुटनों को राइट साइड मोड़ेंगे और गर्दन लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। इस तरह से ये विधि मकर आसन की दोनों तरफ से चार चार बार कीजिएगा, और जिस दिन आप करेंगे उसी दिन पहले दिन ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप खुद बेटर फील करना शुरू कर दोगे।
1: जी, एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, शिल्पा मैम नमस्ते, डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरी वाइफ को हर्पीस की बीमारी है, आई से नीचे की तरफ नोज पर पेन होता है, मेरी वाइफ कौन सा योग करें कि फायदा हो? राजरानी, एज है इनकी 67 ईयर्स, और रोहिणी दिल्ली से।
0: देखिए, हर्पीज एक प्रकार के जीवाणु के कारण होती है और इसमें बड़ा इरिटेशन होती है। जो भी इस रोग के शिकार होते हैं तो काफी इरिटेशन फील होती है, तो कुछ ठंडक चाहिए। तो ठंडक चाहिए तो इसके लिए किया जा सकता है, शीतली प्राणायाम कर सकते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा सा पाइप नुमा बना के फोल्ड करें और जीभ के माध्यम से शीतल शीतल वायु को भीतर की ओर भरें, और फिर होठ बंद करके अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें, और थोड़ी रोकने के बाद दोनों नोस्ट्री से वायु को छोड़ दें। ये कम से कम 5 से 10 मिनट तक प्रतिदिन करें, तो जो इरिटेशन आपके फेस के आसपास आईज के नीचे हो रही है हर्पीज के कारण, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ जो भी आपको ट्रीटमेंट्स जो भी आप ले रहे हैं वो इसको कंटिन्यू में रखें अभी।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, इन टूडे स्ट्रेसफुल वर्ल्ड आई एम मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब्ड, विच योग आसन आई कैन डू टू बी फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव? वैसे तो इनकी उम्र 26 साल की, और हम वृद्धावस्था पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने मैसेज भेजा है तो हम ले लेंगे आज के शो में। तो ये लिखते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हूँ, तो कौन सा योगासन करूँ?
0: फिजिकली और मेंटली अनफिट होना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके अंदर जो एक बायो एनर्जी है वो काफी कमजोर हो गई है। क्योंकि बायो एनर्जी हमें माइंड और बॉडी दोनों से कनेक्ट करती है। जब भी हमारी बायो एनर्जी कमजोर हो जाएगी तो हम फिजिकली और मेंटली दोनों में अनफिट फील करेंगे। और आपको क्या करना है, आप कुछ दिन, केवल कुछ दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिएगा। राइट नोस्टिल बंद करें और लेफ्ट नोस्टिल से सांस अंदर भरना है और फिर राइट नोस्टिल से छोड़ देना है। फिर लेफ्ट नोस्टी बंद करें, राइट नोस्टी से भरें और लेफ्ट नोस्टी से छोड़ देना है। ये ऑल्टरनेट प्रोसेस के साथ ब्रीदिंग आप करिए और कम से कम 10 मिनट जरूर कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि पहले दिन ही, जिस दिन आप 10 मिनट करेंगे, आप अपने अंदर बड़ा ग्रेटेस्ट चेंज फील कर पाएंगे। तो आप इसे करिएगा और फिर इसके रिजल्ट देखिएगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर मैडम को भी नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह ठाकुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: बोलिए रघुवीर जी।
2: जैसे ये मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ, मेरी उम्र है 58-59-60 करीबन। तो आर्मी में क्या होता है कि कोई भी पीटी लंबी रनिंग के बाद या कुछ वार्म अप के बाद ही होती है, तो उसमें बताते हैं कि लंबी सांस नाक से लो और मुंह से छोड़ो करके। तो अब सिविल में तो ये बोलते हैं कि नाक से लो, नाक से ही छोड़ो। एक क्वेश्चन ये था। एक दूसरा क्वेश्चन मेरा, श्रोता बंधु जो रघुवीर जी के लिए आपने बोला था कि जो हम जीभ को मोड़ते हैं तो उससे सांस लेते हैं, तो फिर मुंह बंद करके छोड़ना है या फिर जीभ से ही छोड़ना है? क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करता हूँ, जब मैं कोई भी काम मुंह करता हूँ तो मैं लगा रहता हूँ ऐसे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो योगा से फायदा होता है या फिजिकल से फायदा होता है? क्योंकि फिजिकल रनिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे तो घर रोड साइड में तो दौड़ जाते हैं, कभी टाइम नहीं मिलता। तो योगा से में फायदा होता है ज्यादा कि या फिजिकल उसमें फायदा होता है, थोड़ा बताने की कोशिश करें।
0: देखिए, योग जो है वो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को स्वस्थ करने का एक माध्यम है। फिजिकली जितना भी आप रनिंग करते हैं उससे शरीर का जो बाहरी हिस्सा है, जैसे मांसपेशियां हैं और आपका थोड़ा स्टेमिना अच्छा हो जाता है इतना

0: ही होता है। लेकिन यदि आप शारीरिक और मानसिक विकास और बौद्धिक विकास करना चाहती हैं तो इन सब का जो लाभ है वो केवल योग से ही मिलता है। योग हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाती ये सब चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो योग आपको तनाव से मुक्त करने का एक तरीका बताता है और आप कि सोच एकदम पॉजिटिव हो जाती है और आप सारा दिन रिलैक्स महसूस करने लगते हो।
1: रिलैक्स रहने के लिए तो हम योग करते हैं और योग करना भी ज़रूरी है। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, योग क्या दिन में किसी समय भी कर सकते हैं? स्टैंडिंग पोजीशन में अगर ना कर सकते हो, क्या सिटिंग पोजीशन में कुछ क्रियाएं कर सकते हैं? सरोज मल्होत्रा, साकेत, मेरठ से।
0: सरोज जी, योग का समय सुबह और शाम का ही ठीक समय माना गया है, लेकिन यदि आप ऑफिस वर्किंग हैं और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठे हुए भी कुछ योग कर सकते हैं। जैसे ट्विस्टिंग कर सकते हैं, पैरों को ज़मीन पे टिका करके और आप अपनी कमर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड ट्विस्ट करें, तो इसे चेयर योगा कहते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे आप अपनी गर्दन, काफ़ी आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और गर्दन अकड़ गई है 6-7 घंटे काम करते, तो चेयर पे बैठे बैठे गर्दन को बैक स्ट्रेच कीजिए और गर्दन को साइड मूवमेंट दीजिए। इस तरह से 4-5 टाइम्स बैक स्ट्रेच करें, फ्रंट में लाएं और फिर इसी तरह गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़ें, फिर सेंटर में लाएं, फिर राइट साइड मोड़ें, ऐसे 4-4 टाइम्स इसे करें तो आप ऑफिस में बैठ के भी योग कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअली समय निर्धारित है वो सुबह और शाम का है, लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो फिर आप अपने ऑफिस में चेयर पे बैठ के भी योगा कर सकते हैं।
1: शायद कई बार काम करते करते हम स्ट्रेचिंग करना भी भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब दर्द का एहसास होता है तब हमें लगता है कि हाँ, कुछ अकड़ गया है, जकड़ गया है,
0: तो जब अकड़ जाता है तो उसको करने के बाद तुरंत रिलीफ भी मिलता
1: मिलता
0: है।
1: है। एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, नमस्कार, मन को एकाग्र करने का उपाय समझाइए, क्या उसके लिए कोई योग है? अनिल, गुरुग्राम से।
0: अनिल जी की मन को एकाग्र करने की ही बात हमारे महर्षि पतंजलि जी ने की है। महर्षि पतंजलि हमारे योग के गुरु कहलाते हैं और उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग करने से एकाग्रता आती है। आप योग करने के लिए एक ड्राइंग पेपर के ऊपर एक 1 रुपीस कॉइन्स का एक गोल चक्र बना लें और उसको किसी ब्लैक पेन से ऐसे फिल कर लीजिए, बिल्कुल काले रंग का एक गोल चक्र बन जाएगा। उसे आप दीवार के ऊपर कहीं पेस्ट कर लीजिए और पेस्ट करने के बाद अपनी नासिका से 4 फीट की दूरी पर बैठ करके उस गोल बिंदु को देखें और आप देखेंगे कि 2-3 मिनट देखने के बाद आपके चित्त में एक ठहराव आने लगता है और आपकी एकाग्रता अच्छी हो जाती है। इसे योग की भाषा में त्राटक विधि कहते हैं और जैसे जैसे आप त्राटक विधि का प्रयोग करने लगेंगे आपके मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आपके मन में अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे।
1: तो क्या ऐसे में याददाश्त बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कि वृद्धावस्था में जाते हैं तो कई बार हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो क्या कुछ याददाश्त बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसे योगासन हैं जो बढ़ती उम्र के साथ कर लेने चाहिए?
0: बिल्कुल, प्राय ये देखा गया है कि एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी आने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, हम कोई सामान रख के भूल जाते हैं और कभी कभी किसी किसी का नाम भी व्यक्ति भूल जाता है। तो स्मृति के ऊपर योग का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है तो दिमाग की जो क्रियाशीलता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो डीप ब्रीदिंग करनी होती है, इसमें एक स्मृति

0: शक्ति विकासक योग की बात कही गई है। ये विधि खड़े होके की जाती है, दोनों पांव को मिला करके गर्दन सामने की तरफ रखते हैं और सिर के मिडिल हेड के ऊपर फोकस करते हुए फोर्सफुली आपको इनहेल एक्सहेल 15 से 20 बार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने से ब्रेन के अंदर एक फ्रेशनेस आती है और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो धूमिल हुई स्मृति है फिर से जागृत हो जाती है और फिर हम स्मृति में काफी सुधार महसूस करते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्ते मैडम, मेरा नाम ब्रह्म दत्त है, मंगोलपुरी दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ।
1: अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: पहले तो विशेषज्ञ जो आए हैं उनको सादर प्रणाम।
0: सादर प्रणाम ब्रह्म दत्त जी।
2: हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हाईफाई मशीनें हैं आजकल अत्यधिक तकनीक से युक्त, हम लोग जिम जाते हैं जिम करने, तो क्या जिम और योगा संयुक्त रूप से कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं?
0: दोनों चीजें संयुक्त रूप से कर सकते हैं। पहले जिम कर लीजिए और जिम पूरा जब हो जाए तो उसके बीच में 10 मिनट का थोड़ा गैपिंग रखिएगा, उसके बाद आप योग कर लीजिएगा, क्योंकि जिम जो है वो आपकी मसल्स पावर को बढ़ाता है और योग जो है वो आपके ओवरऑल जितने भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है हमारा और हमारा एस्क्रिटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारा पूरा जो नाड़ी तंत्र है उन पे गहरा प्रभाव योग के माध्यम से आता है और इनमें एनर्जी आती है योग करने से। दूसरा, एक तरफ आप जिम करते हैं तो मसल्स हार्ड हो जाते हैं, टाइट करता है जिम, और योग उन मसल्स में एक नई स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। दोनों में बस थोड़ा सा ये अंतर है कि आपने जो जिम के माध्यम से मसल्स डेवलप किया है वो योग के माध्यम से उस मसल्स को लंबे समय तक बनाए रखने में आपकी योग से काफी सहायता मिल जाती है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, हम सब अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, तो क्या चाय के बाद हम योग कर सकते हैं और हमें अपनी मील्स में क्या क्या खाना चाहिए प्लीज बताएं। पूनम फ्रॉम नांगलोई।
0: पूनम जी, आप दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिएगा, आप दिन की शुरुआत हरे नारियल के पानी से करें। सुबह उठते ही एक हरे नारियल का पानी आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास हरा नारियल उपलब्ध नहीं है तब आप नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि नींबू पानी भी आप नहीं पीना चाहते तो सुबह फलों का एक गिलास जूस पी लिया कीजिएगा। दिन की शुरुआत आप ऐसे करें। आगे आप क्या पूछ रहे हैं?
1: वो कह रहे हैं कि वो चाय के बाद हम योग कर सकते हैं।
0: चाय के आधे घंटे के बाद आप योग कर सकते हैं। जैसे आपने शाम को 4 बजे चाय पी है तो 5 बजे आप योग कर सकते हैं।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, वेरी नाइस डिस्कशन, वेरी नाइसली कंडक्टेड बाय शिल्पा गुप्ता मैडम एंड आल्सो डॉक्टर योगा टीचर। माय प्रॉब्लम इज माय स्लीप गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू यूरिन, माय एज इज 60 इयर्स, प्रोस्टेट ऑपरेशन डन मे बी ड्यू टू बीपी टैबलेट, गाइड फॉर कंटिन्यूस पीसफुल स्लीप, आई एम गेटिंग अप अर्ली, संजय जोशी फ्रॉम पुणे।
0: संजय जोशी जी, आप प्रोस्टेट की इस प्रॉब्लम के कारण जो इनकंटिनेंस यूरिन की समस्या है उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिएगा। इसके लिए मैं एक आसान सी विधि आपको बता रहा हूँ। इसमें योग में आती है एक प्रक्रिया मूल बंध की। आप अपने गुदा के मांसपेशियों को अंदर स्क्वीज करें, गुदा की मांसपेशियों को स्क्वीज करते हुए कुछ देर रोके। ऐसे रोकने के कारण आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम है वो काफी सुधरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्रोस्टेट प्रॉब्लम में सुधार होगा, आपका जो फ्रीक्वेंटली यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है उसमें सुधार हो जाएगा। नाइट में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब

0: हो रही है। ओवरऑल इसका जो पूरे हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। जैसे मैंने बताया, एक नेचुरल वे है कि आप मूलबंध लगाएं, गुदा को भींच के रखने की प्रक्रिया को मूलबंध कहते हैं, इसे रोकिए और फिर उसके बाद इसे ढीला कर दीजिए। कितनी बार करना चाहिए? कम से कम कंटिन्यूसली 5 मिनट तो जरूर कीजिए। एक आता है मल आसन। जैसे इंडियन हमारी टॉयलेट होती थी तो दोनों पैरों के बाहर हम बैठते थे, उस स्थिति का नाम है मल आसन। उसमें बैठ जाइए 2-3 मिनट और फिर बस उसे छोड़ दीजिए। इस तरह से करिए। रात्रि के समय जो लिक्विड डाइट्स है वो कम लीजिए। दूध या अन्य पदार्थ रात के सोने से पहले लेना बंद कर दिया कीजिएगा, और उससे आपकी रात को यूरिनेशन नहीं होगा और कम हो जाएगा, जिससे नींद आपकी क्वालिटी सुधरेगी। और नींद के लिए थोड़ा सा शवासन रात को जरूर कर लिया करें।
1: योग ज़रूरी है, चाहे हम सुबह उठ के करें और रात की अगर नींद की समस्या है तो रात को ज़रूर करें। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर सर जी, प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड रविंद्र पाठक जी का आँखों का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के कितने टाइम बाद योग शुरू किया जा सकता है? बहुत सारी जानकारी के लिए धन्यवाद। वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो आप 20-25 दिन बाद हल्के हल्के योग करना शुरू कर दीजिएगा। 20-25 दिन बाद सर्जरी अगर आपकी हुई है तो 20-25 दिन बाद योग करना शुरू कर दीजिएगा, और धीरे धीरे एक हफ्ते तक जो आपका पुराना रूटीन योग कर रहा है, एक हफ्ते तक उसी रूटीन में आके कर सकते हैं। और कोई सवाल इन्होंने पूछा?
1: नहीं, उन्होंने यही पूछा था कि कितने दिन बाद योग शुरू कर सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: कर सकते हैं, 20-25 दिन बाद शुरू कर सकते हैं।
1: और एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर योगाचार्य को सादर नमन। डॉक्टर साहब, योग बंद कमरे में या खुले पार्क में करना चाहिए? योग में खान पान का क्या महत्व है? बच्चे, जवान और बुजुर्गों को कैसी डाइट रखनी चाहिए? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: योग हमेशा खुले स्थान पे ही करना चाहिए। बंद कमरों में योग करने से उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी पाई जाती है। जब हम खुले वातावरण में योग करते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह अच्छा हो जाता है। कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह अच्छा हो जाने से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होने लगती है। और जहाँ तक आपने आहार की बात की है कि कैसा आहार होना चाहिए, अगर हमारा शरीर 10 से 22 25 साल की एज का है तो हमें अपने शरीर के ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जिसमें सभी तरह के तत्व शामिल हो, मिनरल्स भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो। और अब अगर बात आ जाती है कि उम्र बढ़ गई है, तो उम्र बढ़ करके हमें अपने भोजन पे थोड़ा सा संयम बरतना है। योग में ये भी बताया गया है कि शरीर को 4 भागों में बांट दिया जाए, 2 भाग भोजन के और 1 भाग जल के लिए और 1 भाग खाली रखना चाहिए सांस लेने और छोड़ने के लिए। तो इस तरह से आप भोजन का विभाजन अपने लिए कर सकते हैं।
1: वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन जाते जाते शॉर्ट में एक मैसेज आया है, वो मैं लेना चाहूँगी। वो लिखती हैं, उनकी एज 46 ईयर्स है, रेनू भोपाल से। प्लीज़ सजेस्ट योगा फॉर प्री मेनोपॉज वुमेन के लिए।
0: प्री मेनोपॉज के अंतर्गत जब प्री मेनोपॉज के लक्षण आती हैं, तब प्राय देखा जाता है कि महिलाओं में एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगती है, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो प्री मेनोपॉज की स्थिति में योग की कुछ विधियां, जैसे कोन आसन है, पादहस्त आसन है, ताड़ासन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इतना कर लीजिए, इससे काफी फायदा होगा।
1: और जाते जाते एक लास्ट में हमारे जो श्रोता, उनके लिए मैसेज कि कोई आसन जो हर कोई कर सकता है वृद्धावस्था में अपने, जिससे कि वो स्वस्थ रहें।
0: ताड़ासन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। ताड़ासन वृद्ध भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कम से कम 8-10 बार ताड़ासन

0: करें, पादहस्तासन करें और कटि चक्र आसन करें, कोण आसन करें, यही सारे आसन हानि रहित हैं, सभी कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज की चर्चा से हमने जाना कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को अधिक संतुलित, ऊर्जावान और आनंदमय बनाने का मार्ग है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे योग विशेषज्ञ योगी गुलशन कुमार। आप हमारे कार्यक्रम में आए और योग के महत्व को समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए और हर उम्र को उत्साह के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर उबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुन रहे हैं बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 27वीं किश्त जारी करना, जरा सीधा प्रसारण हम तुसी सुनोगे।

0: एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगी। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगी। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
1: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful.

0: useful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams, and we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
1: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह की बात चल रही है ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं, और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और इससे ज्यादा किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि उद्देश्य आगे रखो
0: लिख द इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑफ एवरी पर्सन नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री द पॉलिसी और द बेसिस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मिशंस which is keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution, we have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal winning a historic election Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and Gram Panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy. They wish to see the Prime Minister. They wish to see the promises which the Prime Minister made come true.

0: जनमानस है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुद्दा प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है और तरह से बंगाल जनता जिस तरह का विशाल मैंडेट है माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उस के साथ प्रतीक्षा कर आरएन रवि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव माननीय पत्तन एवं
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the fact that has been made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that yes, we are on a mission mode. As this country developed, we have to make a Viksit Bharat till 2047. By

0: questions. Yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
1: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में.

0: said that the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Testing Agency, NTA, is conducting a nationwide mock drill as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination, which will be held tomorrow. The exercise, which began at 9 a.m., will continue through the day. More than 2.5 lakh security personnel are participating in the drill, being carried out across examination centres nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centres in the Delhi-Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh 9 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
1: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय अब से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतज़ार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर देखते हैं इसमें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है। ये 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
2: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, वी एज पार्ट ऑफ इंडिया हैव टू मेक इंडिया अ सोने की चिड़िया, दैट गोल्डन बर्ड अगेन। We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. June 20th, 1947.

0: This historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को

0: प्रभाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
1: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the Digital Bharat. We see no middlemen, we see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are doing so many steps. We are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें

0: डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
1: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. एंड आई वांट टू से दैट इट वोंट जस्ट बी द प्रोक्योरमेंट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन इन अ वेरी स्मूथ एंड अ वेरी फंक्शनल वे, बट द होल लाइन ऑफ क्रेडिट. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
0: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है. और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके. आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले. जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए. और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉइल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो. आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
1: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paayein, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing truck flying in the air?
0: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now the national anthem and the national song.

0: धन्यवाद।
1: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister, so excited to see their Chief Minister, and so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true, and the Honorable Prime Minister getting up from his seat along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय, और प्रधानमंत्री जी के साथ
0: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी,
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी,
0: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति।
2: जी हाँ, बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति, उनको भेंट करते हुए, और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए
0: के आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला,
2: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को।
0: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई।

0: স্থাপন করি আমাদের বর্তমান এবং একসঙ্গে গড়ে তুলি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভর পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।
1: और अब बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की एक संक्षिप्त झलक। समय खूब कम, तार मध्ये आमरा तुले धरार चेष्टा करछी बांगलार समृद्ध संस्कृतिर किछु प्रतिफलन। शुरूते अवश्य रवींद्रसंगीत परिवेशनाय पश्चिमबंग संस्कार भारतीर हुगली जिला शाखार शिल्पीरा। सुनते हैं रवींद्र संगीत।

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 crore वुमेन बेनिफिशियरीज आर अमंग्स दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट विच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे

बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है, आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष। बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय,

बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया

इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई, सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा

देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी।

लाहौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थामबे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें। आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें।

0: और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

0: supposed to be? Should I change who's close to me? Or is it all destiny? Destiny, don't lie to me. हेलो हेलो हेलो हेलो दोस्तों, की हाल चाल ने? वेल वेल, मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनी से तुसी सुन रहे एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा एह रेनबो चैनल है। दोस्तों हुनी तुसी सुनिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 23वीं विश्व दे बारे ते बहुत सारिया चीज़ा उत्थे दसिया गई प्रधान साडे प्रधानमंत्री जी द्वारा। ते ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣੋਗੇ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ
1: ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਕਮ ਕਰ ਪਾਪਾ ਜਬ ਜਾਏਗਾ।
2: You like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu. You like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu. You like

0: हातात बॉम्ब सोडा आडवे रॉकेट काय फुल जडी से तूने भरेले पॉकेट अरे वारा बन मेरे जाई सबन येले नाना का बॉम्ब जाके उडा दे घर
1: फू फू गाड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू

0: पापा ने मैन में जा दी।
1: This is total invasion. We're coming to you across the nation.
2: सुनो है, आ जरा परादा हट।

हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल ने जी। मैं थोड़ा अपना आरजे दोस्त रमनीश, ते तो ही सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी। एंड थोड़ा लव यू जिंदगी जी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वेल, कहते ना कि जिंदगी कदे तुप कदे छां, कदे हासे कदे हंजू, पर हर सवेर ना एक नवी उम्मीद लेके आती है। 102.7 FM रेनबो लै गया है तुहाडे हर जज्बात नू गले लाउण वाला शो लव यू जिंदगी। देखो दोस्तों, ये शो की है लव यू जिंदगी, कोई आम आपां कहिंदे ना कि लव यू जिंदगी च असीं ना गल्लां बातें जिहड़ियां करदे ना उह इह जिहियां हुंदियां कि हाँ यार, असीं ना सोचण ते मजबूर हो जांदे कि हाँ जिंदगी इन्नी प्यारी है यार, सानूं तां पता ही नहीं सीगा कि आपां जिंदगी नूं की समझदे ते जिंदगी यार अच्छा है या क्या बात है जी। लव यू कहिंदे ना कि लव यू जिंदगी एक ओ दोस्त है जेड़ा सवेर दी चाह नाल तुहानू हौसला दिंदा है, ट्रैफिक च फसे मन नू सुकून दिंदा है, ते रात नू सोण तो पहला कहिंदा है सब ठीक हो जाओ। इत्थे गल हुंदी है रिश्तियां दी, सुपनियां दी, ते टुट के जुड़न दी, ते डिग के उठण दी। आखिर रियल स्टोरी रियल पीपल दी जदों आपां गल्लां करदे आं, साडे दोस्त कोई दसदा है कि मां बाप का साथ किवें जितया, कोई दसदा है जॉब गवा के किवें स्टार्टअप खोलिया, ते तू जी ले जरा अजीब दास्तां है जे तो लैके फिगर नॉट तक हर गीत एक जड़ी ना दवा बन के लगता है। हर हफ्ते मोटिवेशन स्पीकर, डॉक्टर, रिलेशनशिप काउंसलर आउंदे ने ते कहंदे ने कि जेड़े तुहाडे ते क्यों ते किवें दसदे ने। जिंदगी तो नाराज ना होया कर, ये तो ओही है जो तू मांगदा है, फर्क सिर्फ इन्ना है तो दुख मांग के हंसना चाहना है। डिगण तो डरो ना, डिगण तो डरना, उठना सिख लै क्योंकि जिंदगी कहती है आई लव यू, तू भी कह लव यू जिंदगी। गुलजार साहब कहते थे कि किताबों से निकल कर रिश्तों में झांके तो जिंदगी समझ आए। कदे तो कितने क्योंकि कहते ना हर टुटे दिल नूं जोड़न दा हुनर है, हर उदास चेहरे ते मुस्कान लियाण दा जादू है इस शो विच लव यू जिंदगी दे विच। सो दोस्तों, प्रोग्राम तां आपां शुरुआत कर लिया, तो बहुत सारे सोहणे सोहणे गाने चलाऊंगे। अज आपां गलबात करांगे कि तुसीं अपनी प्रैक्टिस करके ना की बन सकदे, ते असल च प्रैक्टिस हुंदी की है, आपां जिहड़ी तैयारी करदे हां असल च हुंदी की है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸਾਹ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ।

दोस्तों तो सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद आरजे रमनीश। दोस्तों असी ना प्रैक्टिस की गल की ना कि यार जी ना अभ्यास की जी सफलता राज है असल च की है शरीर। सब तो पहले ना आप गल करते हैं श्रेणी की। सब तो पहला होंगे अभ्यास दियाँ भी है ना पांच मुख्य श्रेणियां होंगे वह मैं थोड़ा दसदा दोस्तों कि सब तो पहला आती है शरीरक अभ्यास यानी कि तन का रियास। ये पसीना मंगता है एको काम नू वार वार दोहराना। उदाहरण वजो दसदा दोस्तों मिल्खा सिंह रोज ना सवेरे 5 बजे उठ के ना रेत के टीलिया तो दौड़ते सी। लोग कहिंदे सी पागल है। 1960 रोम ओलंपिक च जो 0.1 सैकेंड नाल जिहड़ा मैडल खुंजिया ना दुनिया ने कहा फ्लाइंग सिख। सचिन तेंदुलकर बचपन च ना सिक्का स्टंप ते रख के प्रैक्टिस करते सी। जो गेंदबाज उन्हों आउट करता सिक्का ओदा। 24 साल वह सिक्का किसी ने ना जितया। क्या बात है। कहने मतलब है दोस्तों यदा फलसफा यह है कि मांसपेशिया की जी याददाश्त होंगी है ना वह 10,000 बार एक मुक्का मारो। कहने मतलब 10,001 वार जड़ा ना शरीर आपे मार दिंदा। समझ रहे होंगे दोस्तों। दूसरी है कि मानसिक अभ्यास यानी कि मन का रियाज बहुत जरूरी है दोस्तों। है गणित दे सवाल शतरंज ध्यान दिमाग भी जिम मंगता। कल्पना चावल जिहड़े पिंड दे स्कूल ते जिहड़े तारियां दे चार्ट बनाउंदी सी रोज रात छत ते लेट के नाम याद करती सी ओही अभ्यास उन्हों नासा तक लै गया। विश्वनाथन आनंद दिन च 8 घंटे जिहड़े शतरंज प्रैक्टिस करदे सी। कहिंदे ने कि टैलेंट तां सिर्फ टिकट है प्रैक्टिस ही पूरी यात्रा है। समझ रहे हो दोस्तों। फलसफा यह है कि जेड़ा दिमाग वरतेंगे नहीं कहंदा पावे जेड़ा दिमाग वरतोंगे नहीं वह जंग खा जाऊगा। उस बाद आती है कलात्मक अभ्यास यानी कि रूह का रियास। सुर ताल कलम बुरश इत्थे गलती भी खूबसूरत होंदी है। उदाहरण वजो उस्ताद बिस्मिल्ला खान 14 साल की उम्र तो ना रोज़ 18 घंटे शहनाई वजाते सी। कहते सी कि सुर रब है रियाज इबादत। अमृता प्रीतम जी ने ना 16 साल की उम्र च पहली किताब लिखी। उस तो बाद रोज़ लिखिया 100 किताबा दे दित्तियां। एक इंटरव्यू च कहा कलम रुक जावे ता मैं मर जावा। पावे फलसफा कला च परफेक्शन नहीं हुंदी सिर्फ प्रोग्रेशन होंगी है दोस्तों। चले अगले 2 पॉइंट से आप जरूर पढ़ेंगे पर उस तो पहले एक सोहना जहा गाना अगर हो जाए तो मजा ही आ जाऊगा दोस्तों।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036।

दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, तो मैं थोड़ा अपना आरज दोस्त रमनीश। दोस्तों हुण गल करदे हां असरदार अभ्यास जिहड़े ने चार नियम, रियाज़ दा जिहड़ा विज्ञान है असल च की है चार नियम जिहड़े ने। पहला नियम है कि 1% नियम, यानी कि अटोमिक हैबिट। रोज सिर्फ ना 1% बेहतर हो, एक साल च 37 गुणा बेहतर हो जाओगे। उदाहरण वजो ना, जे रोज एक पेज पढ़ोगे ना तो साल च ना 365 पेज, यानी कि 2 किताबा। लेखक चेतन भगत ने कहा सी कि मैं रोज सिर्फ ना 200 शब्द लिखता सी, 5 नॉवल बन गए ने हुण। उस तो बाद आता है डेलीबरेट प्रैक्टिस, यानी कि दिमाग हाजिर रखो। टीवी वेखते वेखते ना रियाज नहीं होंदा, जिथे कमजोर हो उत्थे जोर लाओ। उदाहरण वजो ना अर्जुन ने ना मच्छी की अख च विन्नण का अभ्यास किया, पूरे तालाब का नहीं। गायक ना सा का रियाज करता, पूरे गीत का नहीं। उस तो बाद है तीसरा नियम, यानी कि रेस्ट भी अभ्यास है, रुकना भी जरूरी है। कहन दा भाव मांसपेशी जिम च नहीं आराम च बनती है। दोस्तों कहिंदे ना लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग तो पहला ना एक दिन पूरा चुप रहिंदे सी, कहिंदे गले नूं भी आराम चाहिदा, ओवर प्रैक्टिस ना बंदे नूं खा जांदी है। चौथा नियम, ट्रैकिंग करो, यानी कि हिसाब रखो। जो नापोगे नहीं ओह सुधारोगे नहीं। कहना मतलब जेरी साइनल

0: वो नहीं मानना, आपके शुभ कार्य में विघ्न डाला है। क्षमा करो माता, मैंने सत्यवती को बहुत दुख दिया, मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो।
1: माँ, तुम्हारी महिमा अपना

पुरी जी ने, और लिखा है जी खुश रहो, खुशियां बांटो जी, नमस्कार जी और सेम टू यू। और एक मैसेज जी जरा भेजा है जी, पिंड वड़िंगखेड़ा जिला मिश्री मुकतसर साहिब तों भोला सिंह सिद्धू लाडी धालीवाल जलंधर तों मास्टर सोन मोहन लाल शक्की अरविंद कुमार जी ने मैसेज भेजा है जी। चलो इन्होंने मैसेज आप शामिल कर ले हैं, पर फरमाइश जी आप ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 9855107 9855107 ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ।

ये गीत के बोल, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। अच्छा जी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मैसी गीत है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी जी ने। और इस प्रोग्राम दे विच शायद मैं यही जिहड़ी फरमाइश है पूरी कर पाऊँगा, लेकिन मैसेजेस जिहड़े हैं वह शामिल कर लैंदे हैं जी। मैसेज ये एक होर साडे कोल भेजिया है जी, चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो जी, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरुमन सिंह जोसन मेलबर्न आस्ट्रेलिया तो, आदर्शपाल सिंह जोसन वैंकूवर कनेडा तो, रोबिन सिंह जोसन जी ने मैसेज किया है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक होर मैसेज है साडे कोल जी, सादुल शहर राजस्थान तो, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ जी ने बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई सानू। एक होर मैसेज है साडे कोल रजाक मुहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान जी ने मैसेज किया है जी, हनुमानगढ़ राजस्थान तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। एक होर मैसेज है साडे कोल, गुड ईवनिंग जी, कुलदीप जी, राम राम, हेयर इज गौतम, पूनम, स्नेहा और भव्या पारिक फ्रॉम दादरा एंड नगर हवेली से हमारी फरमाइश, तेरे इश्क, शायद पूरा नहीं लिख पाए, चलो कोई नहीं, खैर जो भी है इन्होंने मैसेज जिहड़ा कीता है वह असीं इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर लिया जी। जे फिल्म दे नाम दे नाल गायक और बोल जिहड़े लिखते हैं वह तुसीं भेज दोगे तो वधिया तरीके नाल असीं जिहड़ा इहदे विच तुहानूं लै पावांगे प्रोग्राम दे विच। उस तो बाद आया जी रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल जी ने मैसेज किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। जगदीश रुकिया, प्रमीला डुकिया, ज्योति, शिवम डुकिया, सरिता, सचिन, अमन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु डुकिया और दोती, ईवा धारनिया जी ने मैसेज किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। और मैसेजेस होर भी ने पर मैं होर जिहड़े नहीं इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर पाऊँगा। सो इस प्रोग्राम दे विच एक आखिरी फरमाइश जिहड़ी आ ओह करदे आ पूरी, और इस प्रोग्राम नूं इत्थे समाप्त करन दी दिओ मैनूं भी इजाजत, क्योंकि अगला प्रोग्राम बस ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा जी, शामे गज़ल। सो इस प्रोग्राम नूं इत्थे समाप्त करन दी दिओ मैनूं इजाजत जी, इस गीत दे नाल।

FM-Band 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल। तो दोस्तों समा हो चुके हैं जी 10:01 और ये समा है जी प्रोग्राम शामी गजल दा। गजलां दा वो सिलसिला जिस विच शायरी और कवितावां दे नाल तुहानू नवाजिया जाएगा, मतलब तुहानू तुहाडे नज़र कीती जाणगीआं, तुहानू सुनाइयां जाणगीआं ये गजलां और नाल दी नाल प्यारी प्यारी जी शायरियां। तुसीं भी अपनी शायरी अपनी लिखी हुई शायरी भेज सकदे हो साडे कोल 9855102711027 दे उत्ते। तो शुरुआत करदे हां एक प्यारी जी शायरी शोएब खान जी दी। इतनी खुशी दी तुमने कि बिछड़ने से घबराता था दिल, इतनी खुशी दी तुमने कि बिछड़ने से घबराता था दिल, अगर तुम दूर हुए तो ना पा पाएंगे मंजिल, फिर वही हुआ ना तुम मिले ना मंजिल, अब तो नई राह पर निकल पड़े हैं हम, अब ना मंजिल पता है ना तुम्हारा पता, हम खुद को ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, बदल गए हैं हम खुद हैं लापता। बहुत ही प्यारी जी लाइना और बहुत ही प्यारी जी गजल जगजीत सिंह जी की आवाज़ में आप सुनते हैं जी।

कुछ अनकही कुछ अनसुनी, दिल के पास जो होती हैं वही तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। कभी चाय की प्याली पर, कभी बारिश की बूंदों में, कभी चुपके से रात के साए में खो जाते हैं हम उन्हीं बातों में, लफ्जों से जो ज़्यादा खामोशी को समझ जाएं। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो बिन कहे दिल की हर बात कह जाएं। बातें

हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर मुलाकात पर वक्त का तकाजा हुआ, हर याद पर दिल का दर्द ताजा हुआ। सुनी थी सिर्फ अफसानों में जुदाई की बातें, सुनी थी सिर्फ अफसानों में जुदाई की बातें, अब खुद पर बीती तो हकीकत का अंदाजा हुआ।

जिंदगी तेरे बिन उल्फत सी लगती है, जिंदगी तेरे बिन उल्फत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है। पहले नहीं अब सोचते हैं हम, पहले नहीं अब सोचते हैं हम, कि हर हर लम्हा तेरी ज़रूरत सी लगती है।

किसी और को क्यों देखूं ये आंखें मेरी, किसी और को क्यों देखें ये आंखें मेरी, जब दिल पर लिखा है मेरे नाम तेरा। तुझ पर एतबार करना है दिलों, जान से प्यार करना है, मेरी ख्वाहिश ज़्यादा नहीं बस इतनी है, तुम्हें हर लम्हे में अपना बना कर रखना है। एहसास के दामन में आंसू गिरा कर तो देखो, प्यार कितना है कभी हमें आजमा कर तो देखो, बिछड़ कर तुमसे क्या होगी दिल की हालत, कभी किसी आईने पर पत्थर गिरा कर तो देखो।

तेरा प्यार खामोश मेरे लबों पे जो गूंजे वो एहसास है तेरा प्यार। रूह में मेरी याद बन के समा जाए वो एहसास है तेरा प्यार। पल पल मेरे दिल में ख्याल बन के बिखर जाए वो एहसास है तेरा प्यार। तेरा प्यार, तेरा प्यार।

चांदनी की ये चादर, तारों की ये बारात, कितनी हसी है, कितनी प्यारी है ये रात। हवाओं में घुली है तुम्हारी खुशबू की महक, हवाओं में घुली है तुम्हारी खुशबू की महक, जैसे हो रही हो कानों में कोई मीठी मीठी चहक।